0: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.
1: C'est une vieille histoire, la relation de l'homme à la nature et aux animaux domestiqués en est pleine. C'est les histoires du cheval, un animal qui, depuis des millénaires, accompagne l'homme dans son travail, ses voyages, ses combats et des guerres aussi. Un compagnon à qui beaucoup de peuples ont rendu hommage. Des histoires chevaleresques, mythiques ou liées au quotidien nous amènent dans un pèlerinage proche et lointain à la fois.
2: देव नारायण की बंगली घोड़ी हो गया गम घोड़ी अश्वार तो घोड़ी पर चढ़ पड़ा और बाबूजी की जान के मायने पधारिया और डेम्बा जी को घोड़ो हड़म चरंग को भी पर चढ़ पड़ा और डेम्बो जी खींचो लड़ाई करवा गया रामदेव जी को घोड़ो शेतलो सफेद बीक पर कर सवारी अर पाबूजी की जान के मायने पधारिया और जाइल के खींची को जल घोड़ो बी पर चढ़ परा और अन भारत के मायने खींची झगड़ो करवा गया अब पाबूजी की कहानी